ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी पुलिस ने टोक्यो के शिमाल में तोचिगी प्रीफेक्चर में एक खानदान पर जानलेवा हमले के सिलसिले में 20 के बेटे के एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इससे गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई है। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि कम अज कम एक और शख्स ने मुश्तबा अफराद को हिदायत दी थी। जुमरात को तोचिगी प्रीफेक्चर के कामिनोकावा कस्बे में मुतअद्दिद अफराद एक घर में घुस गए। एक 69 साल खातून को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। इसके दो बालिग बेटे उस वक्त जख्मी हो गए जब वो फार्म पर काम करके घर वापस आए। पुलिस ने इतवार को डकैती और कत्ल के इल्जाम में 25 साल थाकेमाई म्यू को गिरफ्तार कर लिया। वो टोक्यो के करीब कानागावा प्रीफेक्चर से है। इसे योकोहामा शहर के एक कारोबारी होटल से हिरासत में लिया गया। वो 7 माह की बेटी के साथ एक कमरे में थी। कबल अजी इसी रोज उसके शौहर को टोक्यो के हनेदा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। 28 साल थाकेमाई काइतो बैरून मुल्क सफर करने ही वाला था। पुलिस का ख्याल है कि इस केस में एक गुमनाम और वक्ती मुजरिम ग्रोह मुलविस है। ऐसे ग्रोह हमलावरों को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कानागावा प्रीफेक्चर से हाई स्कूल के 4 16 साल तालिबे इल्मों को डकैती और कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया है। ख्याल किया जाता है कि वो हमला आवर हैं। हुकाम का ख्याल है कि इतवार को गिरफ्तार किए गए जोड़े ने तालिबे इल्मों को अहकाम दिए थे। जापान की मईशत पर खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात पर तश्वीश में इजाफे ने मुल्क की तवील मुद्दती कलीदी शराय सूद को 29 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया।

0: गया है। जापानी हकूमत के 10 साल बॉन्ड्स का मुनाफा पीर के रोज 2.8% तक पहुंच गया। लेन देन से मुंसलिक कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि आखिरी बार ये सतह पर मई 1997 में पहुंचा था। सरमायाकारों को तश्वीश है कि तेल की कीमतों में इजाफा तिजारती खसारे का बाइस बन सकता है। टोक्यो के मगरिब में वाकया ओकुथामा कस्बे में पहाड़ी रास्ते पर चहलकदमी करने वाला एक शख्स रीछ के हमले से जख्मी हो गया है। पुलिस का कहना है कि फायर फाइटर्स को इतवार के रोज लगभग दोपहर के वक्त करीबी साकाई इलाके में वाकये की इत्तला देने वाली कॉल मौसूल हुई। इस शख्स को बजाहिर चेहरे और बाजुओं पर शदीद चोटें आई। उसने दीगर अफराद को बताया कि उस पर रीछ ने हमला किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब उसे हवाई जहाज से अस्पताल ले जाया गया तो वो होश में था और उसकी हालत तश्वीशनाक नहीं थी। कस्बे के हुकाम का कहना है कि जब इस शख्स पर रीछ ने हमला किया वो अकेला चहलकदमी कर रहा था। टोक्यो बल्दिया उज्मा का मुरतब करदा रीछ देखे जाने की इतलात पर मबनी नक्शा अप्रैल से अब तक ओकुतमा कस्बे में इसकी 7 इतलात दिखा रहा है, जिनमें 4 मई को साकाई इलाके की एक रिपोर्ट भी शामिल है। इतलात के मुताबिक यह हमला आबाद इलाके से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर हुआ है।
1: अब आज की अहम खबरों की शह सुर्खियां। अमरीकी सदर ने ईरान को खबरदार किया है कि वक्त गुजर रहा है और जोर दिया है कि जंग खत्म करने के मुआहदे के लिए वो रियायत दे। मुतहदा अरब अमारात के दारुलहुकूमत अबूधाबी में हुक्काम के मुताबिक एक ड्रोन हमले के नतीजे में एक जौहरी बिजली घर के अहाते में बरकी जनरेटर में आग लग गई। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।